0: व्यवहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन

0: समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला न होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है।

0: शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनते प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

0: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବେ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद

भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनी चुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:05 आरंभ करुछु भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाळी। आजर सकाळरे आपण माने सुनी चुंदी आपणंक साथी स्मृति को तेबे बंधु आजर सकाळ चलंत आरंभ करबा सारा विश्वर आराध्य देवता कलिजुगर ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथंकर दिव्य स्मरणरे

साथी सुनिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक केन्द्रको कार्यक्रम चलिछि भक्ति संगीतर अर्घ्य थाली सुनिछन्ति आजर सकालरे आपणको साथी स्मृतिको महाप्रभुंकर रोषघर बंधु ए रोषघरे समुदाय 240 कोटी चुली रहिछि। ए चुली होउछि तीन प्रकारर। प्रथम होउछि अहिया इटारे माटी जोड़े हे आयतकार क्षेत्र रे प्राय 3 फुट उच्चता विशिष्ट ए चुली रे एका संगरे धाड़ी हे 3 गोटी हांडी बसी पारे। ए चुली रे सामना भाग रे जालिनी काठ भरिबा पई एवं अंगार बाहर करबा पई पृथक बाट रहिछि। से बड़ी द्वितीय चुलीटी होउछि नुआ पाखुड़ा विशिष्ट चुली। ए चुली रे जालिनी रो उत्तापरो संपूर्ण विनियोग करा जाय एक संगे 9 गोटी कुड़िया रे रंधा जिबा पई ए चुली रो वैचित्र रहिछि। षट कोण युक्त बा 6 कोण युक्त ए चुली रे 6 गोटी झिंका रहिथाय। एहाकु षटकोणीय अग्नि यंत्र बोली कहा जाय। 6 गोटी अग्नि निर्वापक फांक मध्यरो केन्द्र रे गोटिए बड़ कुड़ुआ बसिबा परे अन्य 4टी प्रत्येक रे 2टी करी अपेक्षाकृत छोटो कुड़ुआ एका संगरे रंधन कार्य समापन करा जाय। गोटिए मुह सहायरे जालिनी व्यवहार करा जाय। आउ एहा परे आवश्यक स्थले आउ 9 गोटी कुड़िया अथवा ताठारु कम संख्यक कुड़िया बसी रंधा जायथाय। सेबळी तृतीय नंबर चुलीटी होची पिठा चुली। विभिन्न प्रकार पिठा प्रस्तुत करने साधारण चुलीर व्यवहार होता है। रोषघरे रही 240 कोटी चुली को 10 कोटी विभाग विभक्त करोठ भोग पिठा प्रस्तुति संखुड़ी रंधन तथा विभिन्न मठर मालिकानी चुली सब रही। विभिन्न मठ नाम चुली सब अधिकृत सुआर मान द्वारा व्यवहृत होता है। मठर बराद मुताबक भोग प्रस्तुत कर चुलीर मालिकाना बिक्री खर्दी बा बंधक सूत्र में हस्तांतर मध्य करा जाय थाए। चुलीगुड़िकर अधिकार स्वतः प्रशासन द्वारा नियंत्रित होइथाए। मालिकाना द्वंद अदालती मामलें बहुत दिन चली फैसला हेबा परे निजर नजर अछि भविष्य माने अतीतरे। चुलीगुड़िक स्वार सेवक मानक आयर प्रमुख उत्स होइथिबारु एहा जौतुक आकार रे मध्य प्रदान करा जाय थाए। बंधु हाँ श्रीमंदिर स्वतलिपि अनुसारे ओडिया मठ एमआर मठ श्रीराम दास मठ उत्तर पार्श्वर मठ राघव दास मठ त्रिमाली मठ जगन्नाथ बल्लभ मठ पंजाबी मठ शंकरानंद मठ गंगामाता मठ लक्ष्मी भद्र मठ बड़संथ मठ बौल मठ राधाकांत मठ बड़झाड़ मठ आचारी मठ महीप्रकाश मठ खजुरिया मठ एवं हरिडा खंडी मठ प्रभृति नाम सुआर मान नामरे चुली रही। एहा छड़ा चक्रकोट नीलकंठेश्वर महादेव भिंगारपुर स्टेट प्रभुतिंक नामरे मध्य अनेक गुड़िए चुली ए रोषघरे रही।

सृष्टि करिबा भितरे से वृक्ष पर्वत पशुपक्षी एवं देव असुर नर आदि तीनि लोक सृष्टि कले। विश्व को पालिबा पाई प्रभु धर्म रूप धारण कले। देवता मनुष्य एवं पशु एई तीनि रूपरे भगवान सृष्टिर रक्षा कले आउ पोषण कले। सृष्टिर भोग परे पुणि कालाग्नि रुद्र रूपरे तार ध्वंसर कारण हेले। ब्रह्म कल्पित एई संसारर नाम हेउछि विकल्प।

तो दोस्तों, सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह चलना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, अनेक समय रे आमे भावुचे आम जीवन रे समस्या बहुत अच्छी, किंतु सत कथा हैला समस्या नुहे, आमर दृष्टिभंगी ही आम जीवन को सुंदर आउ कठिन करिथाय। गोटे ग्लास रे अधा पानी थिले केही कहंती जे से अधा खाली अछि, आउ केही कहंती जे अधा भर्ती अछि। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो है उसे कैसे देखते हैं। सुन सुभ सकाळ आज सकाळ रे आपणक साथी स्मृति को सुन।

सो ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे आपण माने जोडी हे जाई छंती एफएम रेनबो कटक सहित एंड आज रा सकाळ रे मु जोडी हे जाई छी आपण क सहित आपण क हम सफर साथी स्मृति. सो माय फ्रेंड्स आओ ए जो सकाळ उठि की तीनोटी कथा भगवान पई ध्यान दियन माने धन्यवाद देबा आवश्यक तीनोटी कथा पई. प्रथम कथा होची गोटे नुआ दिन, द्वितीय कथा होची परिवार एवं निज स्वास्थ्य पई, तृतीय कथा हवन. जिसके पास कृतज्ञता होती है ना, जिसके पास खुशी होती है, वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देती है. तबे फ्रेंड्स स्वप्न देखंतु, परिश्रम करंतु, निज उपरे विश्वास रखंतु, केबे भी हार मानंतु नाही. ताले आज रे सुंदर सकाळ रे एतिके हे कहिब स्मृति जे हसंतु, खुशरे रहंतु, निजरा स्वप्न को साकार करिबा पई निरंतर प्रयास करंतु. अपन माने सुनी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक. एडी से सहोची आज रो ए शुभ सकाळ रो कार्यक्रम निहाती भाबरे आगो को जेमिति जेमिति समय अतिवाहित हबो अपन माने सुनी परिबे अपन मानकर मन पसंद रो कार्यक्रम प्रोग्राम सबु एफएम रेनबो कटक रे सुनथांतो.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी।

0: सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
5: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का

0: सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्य

0: यात्रियों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। The headline.

वेलकम बैक, ट्यून करिछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। तो दोस्तों, सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख से आप कोसों दूर रहे, महक उठे आपकी जिंदगी, ऐसा शुभ दिन आपका आज रहे। सो वर्तमान जीवन आम सहित कनेक्ट होती सकाल सकाल एफएम रेनबो को ट्यून कर स्मृति रही आज सुंदर सकाल सहित आपण समस्त दिन शुभमय हो तेरे साथ साथ आरंभ हो ना मॉर्निंग मेलोडी। चलंतु किछि मेलोडियस गीत सहित आज रहिछि किछि हेल्थ टिप्स आपण मानक सहित मु कथा हेबि, किंतु चलंतु ना प्रथमे सुनि नबा गोटे ब्यूटीफुल गीत आछि आपण मानक पाखकु। एन्जॉय करथांतु ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे रहिथांतु आम सहित।

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु, चल आउट राउंड जीबा चल।
1: तोर तो ऐसा अभ्यास नथला?
2: हे सोई पड़लू ना कौन? सिगरेट टेटानी दे, निद्दा आप आपे चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं,
2: नॉले चेंबु के मिति, मुंडो परे पर रिटेन टेस्ट, ने?
1: ओ बुझिली, सिगरेट पीपी के मिति देखा जाओ तो जानी पर चुता।
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023, anything wrong with you? Don't worry, try for the next time.
1: Tension nahi na, maybe kichi better option thi to pai. Chhade obvious, hale better option kono? Aau kichi option rahibo to pakhare.

सुनी छदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक तबे हम फ्रेंड्स मनंकु एठी कहि रखुजु जे आज पूर्वाह्न 10टा रु 11टा पर्यंत गोटे घंटा पई एक विशेष फोन इन प्रश्नमंच कार्यक्रम रो सीधा प्रसारण करा जीव एथरे आज विषय रहिछि सुस्थ वयोवृद्धि सह योगाभ्यास ए कार्यक्रम रे विशेषज्ञ भाबे जोग देबे जोग प्रशिक्षिका मंजु मिश्र एवं जोग प्रशिक्षक सुरेश कुमार महापात्र कार्यक्रम को संयोजना करिवे प्रज्ञा पारमिता साहू तबे श्रोता बंधु माने ए विषय संपर्कित प्रश्न टेलीफोन नंबर 0671-2303-146 जरिया रे स्टूडियो रे उपस्थित थिबा विशेषज्ञ को सीधा सडक प्रश्न पचारी उत्तर पाई परिबे। सो माय फ्रेंड्स एफएम रेनबो कटक रे सो चली छि मॉर्निंग मेलोडी रो एवं आज आम हेल्थ टिप्स रे आलोचना करूछु जे थंडा पानी पीबा केते दूर ठीक केते दूर भूल तबे किछि रोग रहिछि बा किछि रोगी माने अछन्ती जो मानक पई थंडा पानी पीबा टिके वर्जन करबा उचित जेमति

0: सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानन को हात तयारी हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रो प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो संभार हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटि मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रो 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौज को आहुरी उल्लास रे भरिबा को जाउची सुभद्रा शक्ति बजार रो स्वतंत्र रिहाती एथर रज रे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बजार स्टार स्कूल पाख यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर
1: Hey, hello, welcome back. Tune kari chanti Akashwani FM Rainbow Katak 100.4 Dil se Dil tak. And yes, samaya vartaman nota already hey galani mane nota baji 2 minute already hey galani. And sathe sathe so madhya start hey galani dial in live. सो आम सहित डायरेक्ट डायल इन लाइव रे फोन माध्यम रे सीधा सड़क कथा ही परिवे 0671-230-3153 ए नंबर रे आउधरे कही रखुची 0671-230-3153 स्मृति रही जी आजी रा सकल रे अपनों मानंक सहित कथा हवा पाई तेवे आजी रा टॉपिक रही जी जे प्रत्येक परिवार रे किछि ना किछि गोटे नियम रही थाए किछि ना किछि गोटे संस्कार रही थाए घरर गुरुजन माने जो माने घरर हेड थांती त से माने घरे गोटे परंपरा तयारी करी थांती जोटा की सुरुखुरु रे समस्ते बिना प्रश्नवाची सृष्टि करी ताको पालन करी थांती आ सेटा पीढ़ी ऊपर पीढ़ी चली आसी थाए ताहले आज आपण माने कहंतु आपणक परिवारर सबुठारु सुंदर परंपराटी कोण से विषय आपण माने मो सहित कनेक्ट होंतु 0671-230-3153 ए नंबर रे आपणक परिवारर सबुठारु सुंदर परंपराटी कोण रहिछि देखिबा कहू फोन लाइन बिजी हेबा स्टार्ट हे गलानी के अछंती आजर फर्स्ट कॉलर हेलो के कहू छंती
2: दिन राती मिसी हुए चबीसी तुम्हें मोर रस रंगिणी तुम्हें मोर प्राण संगिनी तुम ओठु झरी पड़े हस खिली तुम ओठु झरी पड़े हस खिली तुम्हें मोर सुना इलेसी तुम प्रेम जाले गली मुफसी खोजी पाऊनी कूल किनारा एटी तुम्हें ओट मोर उर्वशी रंभा केतकी नुहे तुम सरी रूप से तुम्हें भारी सुंदरी गुण से तुम्हें मौनावती राजकोली लता परी भारी शरमी छुईं देले तुम देह जाओ लाजई नमस्कार एंड गुड इवनिंग निशियोबा गोपपुर निश्चिंत कहली कटक रु चंद्रकांत पुष्टि एंड आपन को एडवांस राजा मेनी मेनी विशेस
1: अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग आपन को मध्य तबे चंद्रकांत मते तमे चिन्ही पल्लोनी की
2: आउ जी आपन मते स्मृति आबा मते
1: आउ कहिलो निशियोबा बोली
2: स्वागत
1: स्वतंत्र परंपरा कौन रही घरे
2: माने ये रजो पर तो
1: रजो पर नहीं घरे गोटे नियम थाए गोटे परंपरा थाए तो आपण को घर रो कोन नियम परंपरा रही छि
2: हम घर रो नियम परंपरा हो जे जे बेसी राती जांके माने पदरे बुला बुली करिवेनि आ जे भी जाइते बे जुआडे किन जांदी राती 8टा भीतर सब आसी की पहुंचिया दरकार आउ जदि देरी होला कोन पाई बापा को ठारु गाड़ी सुनिया पड़े आउ ते गाड़ी मध्य बहुत मारे माने बहुत भल लागे ना सुनी लागू भारी राग भी लागे अच्छा। आमे जते जुआड़े जाई थे भी रात 8टा 9टा भीतर सब पहुंचे दरकार आउ दापरे गोटे कथा हो जी आम घर रे बापा टिके बहुत रागी सबर लोक जे तांको जे जदि के काले टीवी देखला आउ तांको आउ गोटे नियम जे खाइबा टाइम गो बाटारो गोटाई भीतर खाइबा टाइम आउ खाइबा टाइम रे जदि आमे जाई के कि कुआ बुला जाए था कि टीवी देखे जाए था बापा रागी जा दे से समय बापा समय खाया टोटली समस्त भाई बंद के खाई पारे
1: अच्छा बहुत सुंदर नियम बहुत सुंदर माने

0: सोए फ्रेंड्स सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को 100.4 दिल से दिल तक आपण को सहित आज सकाल रे आपण को साथी स्मृति जोड़ी हो जाय छी एंड आपण माने सुन चंदी डायलिन लाइव आपण को घर रो कोन रही छी से नियारा परंपरा से विषय रे आपण माने हम सहित कनेक्ट हो चंदी देखि आ जने कॉलर असिलनी की अछंदी हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग मधु मधु भुवनेश्वर सहित कनेक्ट हो जापरली मधु फटाफट कह तम घर कौन रही परंपरा
1: आम घर परंपरा कथा कह प्रथम परंपरा हूँ सकाल छा पूर्व समस्ते शज्ञा त्याग करेंगे छा पर बो हाथ रू गाड़ी शुणा सियोर
0: ओके
1: समस्ते एकाठी आम खाइबु जलखिया हूँ जो मध्यान भोजन हूँ कि रात्रि भोजन समस्त एकाठी खाइबु कई कार को मान कौन कौन सी कारणवश जहाँ भी हे जाऊ मैंने मिसबिहेव करी टाइप रहा कर बाहर को कथबार्ता कर
0: घर जो कली झगड़ा भाई भी मान भाई मानते बड़ मान को जहाँ भी सम्मान देवाक पड़ो
1: हाँ मैंने कहते मैंने अत्याधिक जो कहती टाइप रो कौन मैंने कथा बार्ता रे बाड़ बता रही नहीं टोटाली
0: बुझा नहीं
1: ठीक है मुझे आप मन पड़नी मुझे जन को गाड़ी गुलाज कर बो आम दौड़ी पानी देखा सत
0: कथा
1: जुआड़े जाओ तुम बाहर को जाओ मिनिमम संध्या छा रू सतटा भितर आस घर पहुंच
0: अच्छा जदी लेट है ला, ताले फोन करी कही हुआ, ना कौन
1: फोन करी कही हुआ, कारण पे लेट है जदी नक कोई लगी चेक कर लो सीधा आइला घर हमरा ताला पड़ थी
0: अच्छा एम के भाई हेची जे लेट हेची बाहर रही छ रात सारा
1: एम पी मो साथ रे हेची कारण मु तो बहुत बुला बुली करे
0: हां
1: मोबाइल तक से फोन करे बो हमरा फोन करे फोन करले मु उठेगी तो कह दिए दिन कौन कारण उठेली
0: उठेली
1: सीधा से घर पहुंचल देखा घर भर बाहर मैंने भितर पटे ताला पड़ी विश्वास कर मैंने बहुत रिक्वेस्ट कला खोल
0: माँ मन ना तो पिलाटा बाहर रही जो

0: कारीगर सहायता योजना मुख्यमंत्री बयन शिल्प विकास योजना मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भली लोक कल्याणकारी योजना द्वारा लक्ष लक्ष चासी परिवार हेउछंती उपकृत
1: विकासर धारा ओडिसा सारा
2: वेलकम बैक माय फ्रेंड ट्यून करिछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को देखिबा आ जने कॉलर असिगलनी की अछंती हेलो
3: आमो घर एक मंदिर सेतसर गतु सुंदर आमो घर एक मंदिर सेतसर गतु सुंदर ममतार मूर्ति मन दिए सकती आम बो आमर आमे सब बौर यही आम संसार ओ
4: जय जगन्नाथ
2: बढ़िया सुंदर गीत टी मध्यम आरंभ कले पुणी से सीडीए रु कॉल टी लागी गला अच्छा दिवाकर भाई कहतु
4: निहाँ
2: तेज दिवाकर भाई कौन रही घर परंपरा संस्कृति
4: हाँ घर परंपरा संस्कृति को तो नहीं चलने दिन गुड़ी को भल कटी कि समाज रे माने भल शिक्षा प्रदान करें घर छोट पाना घर पर चलवा मुस्किल किंतु समस्त नीति नियम भल मंद को लेकिन चलवा निहाती दरकार जमती कि आम घर नीति नियम जमती रही निश्चित भाव में पांचटा साढ़े पांचटा होने समस्त उठे
2: अच्छा
4: समस्त सब सदस्य उठी जी मिसेस तो आगे उठी जाती पर मु भी उठी जाए मो पु तो समस्त आगे उठे सी पांचटा पर उठी तार नित्यक्रम सारी साढ़े पांचटा बेला आम उठला बेलू सी तार गाड़ी बाहर कर पलिजी साढ़े पांचटा पर ही पलिज से खेल पड़िया तार खेलकूद नित्यक्रम सारी तार जिम जदि जो बारी में जिम जवा कथा जिम जाम सारिकी पुणी साढ़े सतटा बेल को घर पशे आस बाथरूम रे पुअर नीति नियम टाइम मु तो बाहर की गोटे छोट टपिया पानी बोतल उषुम कर बाहर को आसली दिटा जब फूल मिलला तो भल कथा टिके एकर सेकर हो जाए तो पुणी जदि चलिकी आसला बेल को प्राय हो जाए साढ़े छटा जो दिन न जाए भी से दिन भी दुकान आसी धड़ाधड़ी करके से साढ़े छटा बेल बाथरूम क्लीयर हो मिसेस बाहरी आसती सी जाकि साढ़े छटा भितर मोर नित्यक्रम सब सर जाए
2: ओके तो माने सकालटी पूरा पूरी सकालटी पूरा पूरी गोटे पूरा नियम अनुजाई समस्त गोटे श्रृंखलित नियम समस्ते चली था
4: हाँ आज्ञा ता पूर्व नगाधे न फ्रेश हवा पूर्व ठाकुर को सूर्य को पानी टेकवा ठाकुर को मुंडिया मारवा यही तो दैनदिन चर्चा रही छाड़ा ये सब पर पुणी जदि मिसेस कौ दिन असुविधा कौ दिन नित्यकर्म न सारी गाधुआ पदा न होती है आमको से दिन सका चा आ मिलनी
2: बिलकुल कारण रोष घर को जी हमी ना यहाँ गोटे ओडिया घर रही
4: रोष घर को जदि भी जो जो रोष घर रोष जो सरंजाम रही
2: आरंभ करू प्रथम प्रणाम करू बा पूजा करू दीप फीप बहुत जन घर अच्छी दीप बंदे दिखती तो ये सब जिन हुए बहुत सुंदर नियम दिवाकर भाई आपण घरे समस्ते गोटे श्रृंखलित भितर चली नियम भितर चली एमती चालू आग को बहुत बहुत धन्यवाद आज कॉल कर
4: नमस्कार
2: जय जगन्नाथ कल रे फटाफट जोड़ी ही जानतो 0671-230-3153 नंबर रे आपण
5: भुवनेश्वर कहते कृपा सिंधु कवि
2: कृपा सिंधु भाई वेलकम एफएम रेनबो को
5: नमस्कार सुंदर टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक यहाँ गोटे घर घर टा जमती गोटे नियम भितर जम चलिया दरकार टॉपिक टा सियाड़ को जाऊ बहुत सुंदर टॉपिक जमी घर माने मंदिर पशिला मानने घंटी गोटे लगी घंटी बाजिला मान मन भितर भक्ति गोटे
2: आस

वेलकम बैक टू इनको चिन्मी आजकल 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक रेडियो वन सफर सागर अच्छी आपण सहित सो चलची कलाकार आ कलाकार रे आज आम कथा होचे अभिनेत्री दिशा पाटन को संपर्क रे। फ्रेंड्स, दिशा पाटन को जन्म 13 जून 1992 उत्तर प्रदेश रो बरेली ठारे होइतिला। छोट बेळु से मॉडलिंग ओ अभिनय प्रति बहुत आग्रही थिले। तांकर सौंदर्य, आत्मविश्वास एवं मंच उपस्थापना तांकु अन्यमानक ठारु अलगा करथिला। कॉलेज जीवन रे से विभिन्न मॉडलिंग प्रतियोगिता रे भाग नथिले। तांकर सौंदर्य, आत्मविश्वास एवं मंच उपस्थापना सतरे अन्यमानक ठारु निहाती भाबे अलगा परिचय दैथिला। धीरे धीरे विज्ञापन जगत रे से सुजोग पाइले एवं तांकर करियर रो यात्रा आरंभ हला। निजर परिश्रम प्रतिभा बळरे से खूब कम समय रे चलचित्र जगत रे निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारथिले।

0: माँ माँ देखों तू इतरो राशन कार्ड रे कितने चावलो मिली ची।
1: अरे बहु इतने चावलो कोठु अनिलु किए दला
0: किया आउ दबा माँ आमो सरकार दे चंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई ची परा एबे आमो को मुंडो पीछा 500 किलो नु हो 200 किलो चावलो संपूर्ण मागणा रे मिलु ची।
1: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आमो दुख बुझी चंती
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रु अधिक ओडिसावासी को मिलु छी अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा ओडिसा सरकार आपनक सुख दुख रा साथी।
3: मोर जणे जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगे सालेनी किंतु से मानिबाकु प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पुओ ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबाकु लागिला तापरे कहिले एबे लगेइबाकु ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in।

वेलकम बैक ट्यून कर चुन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकार एक दर्शन दिल तक रेडियो हम सुपर सागर अच्छा आपन को सहित सो चलची कलाकार अब कलाकार रे आज हमें कथा उचे अभिनेत्री दिशा पाटानी को संपर्क रे फ्रेंड्स दिशांकर अभिनय जीवन आरंभ होइतला गोटे तेलुगु चलचित्र माध्यम रे परे से बॉलीवुड रे प्रवेश करी दर्शकों को हृदय जीतिथिले विशेष करी एमएस धोनी दि अनटोल्ड स्टोरी चलचित्र रे तंगो अभिनय तंको घरे घरे परिचित कराइथिला ए चलचित्र रे से प्रियंका झा भूमिका रे अभिनय करी दर्शकों को प्रशंसा लाभ करथिले परे परे बागी टू मलांग एक विलेन रिटर्न्स एवं अन्यन चलचित्र रे निज अभिनय रो दक्षता रो से प्रमाण देछन्दे अभिनय सहित फिटनेस प्रति थी निष्ठा अनेक युवक युवती प्रेरणा उत्स होती।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

वेलकम बैक टू इनको चिद म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची किछि कथा किछि गीता आउ किछि कथा किछि गीत रे आज हमें कथा होछे मनर नीरव चिट्ठी से संपर्क रे फ्रेंड्स आपन के पे एमिते अनुभव करिसेंति कि मनरे बहुत किछि कहिबाकु थाए किंतु काहाकु कहि हुए नै शब्द गुडीक हृदय रे रहि जाय अनुभूति गुडीक आखिरे भासी उठे किंतु ओठ पर्यंत आसी अटिक रहि जाय थाए सेइ अकुआ कथा माने ही हेउछि मनर नीरव चिट्ठी चिट्ठीर एक सुंदरता अछि सेठारे शब्द कम थाए किंतु अनुभव आउ अनुभूति बहुत थाए आज जदिओ मोबाइल आउ सोशल मीडिया रो जुदो जुग हो जाइछि तथापि मनर चिठी आज मध्य कागज खोजुछि केबे रातिर निरवतारे केबे वर्ष

0: अरे एते जल्दी थकी गलु, चल आउ गोटे राउंड जीवा चल।
1: तोर तो सब अभ्यास नथला।
2: हे सोई पडलु ना कोन, सिगरेट टाणी दे, निदा आपे आपे चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने।
1: ओ बुझिली, सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउछु जानि पारछु त।
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thibo to pai. Chhade abhyas. Hale better option kono? Aau kichi option rahibo to pakhare.

वेलकम बैक चुन कुचुन म्यूजिकल यूज 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकाडक दैत्य दिल तक रे रेडियो हम सफर सागर अच्छी आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स आम भितरे इमिति अनेक चिट्ठी अछि केहि स्वप्न पई केहि अपूर्ण इच्छा पई आउ केहि भांगी जाइथिबा संपर्क पई किन्तु ए नीरव चिट्ठी गुड़िक आमको सिखाए जे अनुभूतिर भाषा सबुबेले शब्द नुहे केबे गोटे हस केबे गोटे लुह आउ केबे गोटे नीरवता ही सबकिछि कहिदिए जदि आज आपणक मनरे कोनोसी नीरव चिट्ठी लुचि रहिछि ताकु निहति भाबरे शब्द दियंतु हुए तो आपणकर मन हल्का होइछिबो हुए तो कहार हृदय खुशीरे भरिछिबो

वेलकम बैक ट्यून कर चंद म्यूजिक के लिए 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक देल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन के सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स निरवतरे मध्य गोटे शब्द थाए से शब्द को सुनिया पई दरकार गोटे सुंदर हृदय अनेक लोक हसु थांदे किंतु भीतर भीतर कांदो थांदे अनेक लोक सफलतार शिखर से थाई मध्य एकाकी अनुभव करती आनेक लोक निज जीवन अधा कहानी क्या कहीपारती ना से कहार निरवता को दुर्बल भावंतु ना हूं तो से निरवता भितर लुचि रही हजार हजार अकुआ कहानी हाँ आज घर को फेरवापर गोटे काम करतु मोबाइल को किसी समय पर दूरी रखु निजस किसी समय बिता आओ निजर मन को पचारत मुझक कौन कह चाह कथी आज पर्यत मो हृदय रही जाहस कर आपण जीवन सबुठ सुंदर चिठी आज पहुंची कह रय पर्यटन।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଡ଼କ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दर लाभ उठाई पारे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

वेलकम बैक टू उनको चंद म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देलसा देल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची आज चर्चा रे आ आज चर्चा रे मु आपन को ब्यूटीफुल क्वेश्चन करथिल कि आपन आपन को लाइफ रे

ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करिकी बापांकू देखाउथिला काली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखिली तापरे भाबिली कि निहाती एटा फोटोशॉप करा हिच

0: जोड़ी बिल पॉसिबल केमिति पचारिली तो कहला
1: भाई सब से ऊपर वाला रा दया सोलार पैनल अच्छी ना
0: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

वेलकम बैक ट्यून कर चुन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकड़क दिल से दिल तक रे रेडियो हम सब सागर अच्छी आप लोगों सहित सो चल ची आज ही चर्चा रे आज ही चर्चा रे मु अपन गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन करथली कि लाइफ रे आपन जो आगो को बढ़ु चंदी कहाँ आपन बहुत इंस्पिरेशन पाई चंदी वो पकड़ आओगे तो मैसेज ऐसी पहुंच जाइए देखा किए मेसेज टी परवर्ती मेसेज टी रश्मि रंजन छरिलो कटक्रु से लिखिंट सागर भाई गुड आफ्टरनून प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगुच भयस मत बहुत पसंद बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि भाई ब्यूटीफुल मेसेज पे टॉपिक विषय यह लिखिंट कि भाई बापा मा व्यतीत मोर सब बहुत बढ़िया सांगटी अच्छी ता ना हूँ दीप्ति रंजन आउ एफएम रेनबो तरफ रेनबो जरिया रे मुताको कहिबा को चाहूँची कि रश्मि तुम्हें सबु किछि आउ तुमर सब सुख दुख रे ठिया होइछु तेणु तु मोपाई सबु बेले इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया मेसेज टी करछन्ती रश्मि भाई तांकर सांगो पई तांकर नाम ही रश्मि रंजन बोली से उल्लेख करछन्ती से सबुबले तांको संगेर अच्छंती आउ रहिचंती सेत पई से सबुबले तांको धन्यवाद देबा को पसंद करंती नेत बबरे मु कहिबा को चाहिमे कि फ्रेंड्स जीवन रे सबु किछि समय रे ठीक चले केबे सफलता मिले केबे विफलता मिले केबे मन रे खुशी भरी जाए तो आउ केबे निराश रे मध्ये हमें भांगी पड़ी थाउ ठीक समय रे जे माने आम पाखरे छिडा होइ रहिचंती से माने होछंती प्रकृत बंधु सीए जी केवल के खुशी से सामिल हमें दुख भार बांटती गोटे कथा गोटे कथा गोटे हस गोटे समर्थन आम भितर निश्चय नुआ आशा उद्दीपना जगह था तो फ्रेंड्स बहुमूल्य मतामत मो सहित सेयार कर पारंती लेखंतु एफएम आरसी गोटे स्पेस दियंतु कौन लिखिबा को चाहुचंती लिखिता पठाई दियंतु 9495963210 को आपण मते व्हाट्सएप मध्ये करि परिबे हमर व्हाट्सएप नंबर ते होची 8895254200 क्वेश्चन टी आउथरे कहि रखुची आपण को लाइफ रे आपण काहाटु अधिक प्रेरणा पाइचंती जीवन रे आगु को बढिबा पई

0: sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of three-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए खासकर विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे एक रिपोर्ट
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं दोपहर समाचार

0: चार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष

0: वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का

0: शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋକା ଡାକ ଦେଲ୍ ସେ ଦେଲ୍ତାକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ।

सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंको हात तयारी हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रो प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर संभार हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटि मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौजकु आहुरी उल्लास रे भरिबाकु जाउछि सुभद्रा शक्ति बजारर स्वतंत्र रिहाती एथर रजरे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बजार स्टार स्कूल पाख यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर।

वेलकम बैक टू उनको चंद में जिकली और 100.4 अगस्त वाणी एफएम रेनबो कटक देल से देल तक रे रेडियो हम सफर सागर छ आपन को सहित सो चल छी मोदेश आ मोदेश रे आज मे कथा होचे आम हस्तशिल्प संपर्क रे फ्रेंड्स ओडिसा रे अनेक प्रसिद्ध हस्तशिल्प रहिछि जहा खाली आम ओडिशार प्रसिद्ध नुहे सारा भारत में मध्य निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर ऐतिह सहर कटक्र तारकाशी कम रूपरे कारीगरी जो कटक नगर धवल टगर नाम समग्र राज्य में सुख्यात से पिपिलर चांदुआ हो कि रघुराजपुर पटचित्र हो आज सारा भारत में प्रसिद्ध लाभ कर आगक ए विषय कथा बट म्यूजिकाल ब्रेक पर स्टे ट्यून्ड

0: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करके बापा को देखौथिला काली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखली तापर भाबिली कि निहाती एटा फोटोशॉप करा हिची नहले जीरो बिजुली बिल पॉसिबल केमिति पचारेली तो कहला
1: भाई सब सही ऊपर वाला रा दया सोलर पैनल अछि ना
0: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in हर घर सूर्य घर
2: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ होई जायछि एथिपई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी

वेलकम बैक टू कुचन म्यूजिकल हियर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देंचे दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन को सहित सो चलची मोदेसा फ्रेंड्स हस्तशिल्प होची हमरो परंपरा हमरो परिचय एई शिल्प केवल संस्कृति रो स्मृति देउनी बरम विदेश रे मेड इन ओडिसा हस्तशिल्प भारतर परिचय को उच्च स्थान रे पहुंचे परंछि आसंतु हमर ई परंपरा को आगामी पीढ़ी को पहुंचाइबा सही हमर निश्चय भाव रे गोटे प्रथम कर्तव्य हेबा आवश्यक तो फ्रेंड्स एड से शुरू करछु आजर मोदेश प्रोग्राम मो पर परे जुड़ी जतिन आरजे सुदीपा जी आपन का आफ्टरनून को करबे पूरा सुरिला टिल देन टेक केयर हबे नाइस डे सागर इज साइनिंग ऑफ स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो।

और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

ट्यून करिशंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक चारिपाखे आमर परिवेश अछि आ प्रकृति को नै जे परिवेश तयारी से प्रकृति रो आमको बहुत किछि शिखवा को मिलता है जमती टी आगु नदी कथा कहली जे जेते जेते भी असुविधा उपछके कोठी जोर रे नदी टे जाउथबो कोठी धीरे नदी टे जाउथबो पहाड़ पर्वत केते माने विभिन्न प्रकार जगह आपने इमेजिन भी करि पर नथे नदी टा एई भलिया जगह दे कि भी जाउची तथापि से जाउची ता कर्म करि चलची ता लक्ष्य स्थल रे पहुंचबा पई ठीक समिति गच्छटे जेते बले फळंदी गच्छटे हेथिबा ना आपण देखिबे से केमदी नॉइंग के रोथबो पाठरे भी पढाई छी ना हमो के एजेंसाटा डेफिनेटली जेते बले देखिबे आपण जणे ज्ञानी मनीष भल बुद्धि सुधि मनीष से बहुत नम्र हेथिबो से बेसी कथा को नथिबे बहुत चुपचाप सब बले सिखिबा को इच्छा कारण तांको पाखरे बहुत नॉलेज एवं तांको आहुरी नॉलेज गेन करबा को इच्छा सेथिपई मु कहै जे प्रकृति रो आमो को सब जेंस सिखिबा को पड़ो एमती से तो आहुरी बहुत समय दरकार सब थ्रु कौन शिखा डेफिनेटली विषय आउ दिने कथा हेबी जे प्रकृति रु आम कौन कौन शिखा उचित नदी ठू गु पहाड़ पर्वत आकाश सबुठ सबुठ आम कि शिखा को पाई

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए internet आधारित social media कार्यक्रम का उपयोग है. ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मजेदार और दिलचस्प चीजों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ता

गांव के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहां से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 इयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं।

0: इसीलिए इनसाइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: अच्छा ओके बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच कॉल करथिबारु
1: आज्ञा
0: नंबर 0671203031 53 रे आपण मध्य कॉल करि परबे शेयर करि परबे कोन सब एथरो रजरे करबे बोली प्लान करछेंदी हेलो हेलो
2: नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार
0: जय जगन्नाथ के कोथिले कोडु कोथिले
2: बहराम बेरा कहती खोर्धा बोलगढ़ ब्लक अंतर्गत आरिकमा ग्राम डिपोजिटर कहते
0: आज्ञा कौन सब रज
2: बहुत किसी हुए आगे बहुत तो पिला बहुत किसी रोज दली खड़ी सब खेला हुए बुलाबूली हुए सब हुए आमर गोटे बहुत बड़ पर्व रज संक्रांति हुए आम गाँव बुझे आज्ञा गोटे पोखरी अच्छी आम से आरिकमा ग्राम गोटे नेलिया पोखरी बोले अच्छी पोखरी रू मरा हुए सेदिन संक्रांति दिन माछ मरा हम आज्ञा पर्व टाइम रज संक्रांति माछ मरा हम से रात से आम विराट जंगल गोटे अच्छी माँ बहुत विराट पीठ गोटे अच्छी माँ कौशा सिंह रातिर से माछ जाए कटा हम रात सब गाँ लोक मैंने भाग घंटा माछ से सब रोसे कर खाइबे रात दिटा तीन टाइम फेरबे यहाँ गोटे बड़ पर्व आम से गाँव रही आरिकमा ग्राम से आउ सब अन्न भोज भात हुए पिठा फिठा सब हुए लोक मान घर सब जाइ पिठा बंटा बंटी हुए सब प्रोग्राम टा आमर
0: अच्छा बहुत बढ़िया
2: माछ टा बेसि बांटिकी से ये करंती फिस्ट करी खान सेटा
0: स्पेशल से ठीक करे
2: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
0: ओके ओके बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच कॉल करथिबार
2: रहले नमस्कार जय
0: जय जगन्नाथ नंबर 0671203031 53 रे आपण मध्य कॉल करी की शेयर करि परबे आपण एथरो रज रे कोन सब करबे बोली भाबी चंदी हेलो
3: सुधीरा मैडम नमस्कार मु जगतसिंहपुर रु डली कहुथली
0: नमस्कार कौन सब मान रज किणा बोधे सब रज कथार से लगुच
3: जाणीगली शाढ़ी प्लानिंग प्रथम रज दिन जीव इन मठ बालिकुदारे इस्कन मठ को बढ़िया जगह आमे कौन जाइनु शुणीचु खाली आउ सेठी खाइया पिया बराद करचु अर भात डालमा खटा खीरी से मैंने सब करथेबे सेठी छटु खाइबु सेठी खाइकिरि आसिबु तापरे कटक जाने सार निमंत्रण करचेंदी
0: अच्छा
3: द्वितीय रज दिन
0: सेकेंड दिन र अच्छा
3: आज्ञा कटक रे क्विज प्रतियोगिता हबो सब बढ़िया बढ़िया व्यक्ति माने सब आसिबे सिंगर माने आसिबे शैल मैडम श्यामामणि देवी इमान सब आसिबे गीत फीत बोलिबे क्विज प्रतियोगिता हब आमे भी सेथरे भाग नबु
0: क्विज प्रतियोगिता खेलिबु
3: आउ तृतीय रज दिन जने बंधु आमे घर को आसिबे
0: अच्छा माने जने बंधु आसछन ना नाही माने बहुत जण संग आसछन
3: जने कहिछन आसिए बेली आउरी भी केते आसी पारंती आमे को जने नाती अचानक आसी जदि पहुचिबे स्वागत करो झियारी मो मौसी मो नानी समस्त आसती भुवनेश्वर नुआ घरिका अच्छा आसती आम घर को बुलाक जन जदि आसी पारती ना आम प्लानिंग सब रही तीन दिन जाक रज
0: ओके बहुत बढ़िया सॉर्टेड पूरा आप रज
3: मैडम आम पोड़ा पिठा
0: सारा
3: आज काली सकाळ उठिकिरि आमे खाइबु
0: निश्चय
3: कादे अलता घरिका पिंदी ड्रेस पिंदी ठाकुर पाखरे मुंडिया मारिबु गुरुजन मानक मुंडिया मारिबु आउ पोडा पिठा खाइबु पान खाइबु मीठा पान आउ किछि बंधु अछन्ती ताको पे पोडा पिठा आमे नै कि जाउ ए जगतसिंहपुर भितरे के कहंती तमर चुली रे पोडा पिठा हौछ आमको भारी भल लागे आउ आम पे आमे तम पोडा पिठा को अपेक्षा करू तेणु आमे प्रति वर्ष
0: कौन सब प्लान रही रज स्पेशल गीत।

0: ट्यून करिछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल दाय नंबर 0671-230-3153 रे शेयर करि परिबे कोन सब प्लान करछंदी इथरो रजरे हेलो
1: हेलो सुविधा दी नमस्कार
0: नमस्कार की कोथले कोड़ कोथले
1: आटाउडर कहतले सलाता साहु
0: सुबिलानी कथाटा कोन हला
1: आटाउडर कहतले सलाता साहु
0: आज्ञा कोन सब इथरो रजरे करिबे
1: रजरे सब हमर ड्रेस किणा हेइछि मेहंदी थु हेइछि किणा कि पड़िबो पिठा पणा भाउज बसि करुछंदी पिठा पोड़ पिठा सब चलती रात की मेहंदी पड़ब दही घर आड़े जी बुलिक दोली पोड़ी खेला
0: मैंने भौणी ना पीसी
1: ना भौणी
0: भौणी मेहंदी किए लगे पुणी आपन को
1: मेहंदी भाउज सांग भाया भाउज सी लगेद
0: आठटा
1: मेहंदी किना थी समस्त मिसिक पीसी जी भाउज भाउज भौणी जन आई सब मिसिक लगे
0: ओके बहुत बढ़िया थैंक यू कॉल कले निज मतामत शेयर कले
1: दीदी नमस्कार धन्यवाद
0: नमस्कार नंबर 0671-230-3153 रे आपण मध्ये कॉल करि परिबे शेयर करि परिबे आपण कोन सब प्लान करछन्ते ई रजरे हेलो
2: हेलो दीदी नमस्कार
0: नमस्कार की कोथले कोड कोथले
2: मु कटकरु रश्मिता बेहरा
0: करू छी ओके कोन सब रज प्लान एथरक
2: रज प्लान कौन दीदी आम पोड़ पिठा हम गोटे बिरी पोड़ हम गोटे चाउल पोड़ हम आली भौणी घर को जीवार अच्छे बालू बजार बुलिकी आसिले पर दिन जीव पखड़ी
0: अच्छा
2: थर्ड रज दिन जीव नगरी
0: नगरी
2: पतन नगरी
0: अच्छा
2: फास्ट
0: दिन भौणी घर कहले जो दी दिन से किए किए रो
2: दीटा भौणी घर चंडी मंदिर पाखे गोटे भौणी घर आ गोटे भौणी घर बालू बजार नदी बिहारी से दी भौणी घर को जीव आदिन जा कखड़ी जीव आ लास्ट रज दिन जीव झाकुले

0: ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671233153 रे कॉल करी परिवे शेयर करी परिवे कौन इथरो रजरे सब करबे बोल प्लान कर शंदी हेलो हेलो
1: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार के कोथले कोड कोथले
1: अच्छा मैडम
0: के कोथले कोड कोथले बहुत कटिकटी आस मानते
1: बाहर
0: हाँ हाँ भल कले।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

नमस्कार, न्यूज हेडलाइन सह मुसुकन्या। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणि आसंता सोमवार रज संक्रांति उपलक्षे छुट्टी जोगुं बंद रहिबो। राज्य में 64 स्थान नामर इंग्राजी नाम संशोधन नहीं कैबिनेट निष्पत्ति नेबा परे मासे मध्यरे राज्यर समस्त ऑफिस किंबा प्रतिष्ठानर ना सठिक भावरे लेखा जीव एवं उच्चारण हेबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। आईन पूर्त ओ अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गंजाम जिला गस्तर जाई विभिन्न प्रकल्पर समीक्षा करिसंती। ऋषिकुल्ला नदी उपरे 152.10 कोटी टंकार निर्माणाधीन कंसारीगंड ब्यारेज को बुली देखिबा सह आसंता वर्ष मार्च मास सुद्धा काम शेष करिबाकु विभागीय अधिकारी को निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 19 और 20 रे दुईदिनिया मयूरभंज गस्तरे आसछंती। 20 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रायरंगपुर गस्त करिवे। उभय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गस्त पई 125 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। रथयात्रा पई रथकळा रे अगभुई बा तृतीय भुई स्थापन शेष होईछि। 27 पार्श्व देवादेवी 6 द्वारपाल और सखी रे रंग दिया चलीछि। ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 चिठा प्रकाश पाई। घरभड़ा व्यवस्था संस्कार आने लिखित घरभड़ा चुक्ति बाध्यतामूलक दुई मास भड़ा प्राधिकरण और थाना पंजीकरण करने को बाध्यतामूलक। भारत अफगानिस्तान मध्यरे धर्मशाला रे प्रथम दिनिकिया मैच आयोजित होउछि। टॉस जीती टीम इंडिया प्रथमे बोलिंग पई निष्पत्ति नेछि। वर्षा जोगु मैच 25 ओवर को ह्रास पाइछि। 5 ओवर पावर प्ले रहिछि। वर्तमान पई न्यूज हेडलाइन सेति कि परवर्ती न्यूज हेडलाइन सुनि परिबे राती 8:00 समय रे।

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो समय 7:31 सुधी पाछे आपणक पाखरे जमेबा आपणक राव आमर संध्यार आसर जणी परिवे निज नियर एंड यूमांस को आपणक गुड विशेस यस मोबाइल फोन रो मेसेज बॉक्स को जेबे कैपिटल लेटर रे लिखिबे एफएम आरसी स्पेस देबे ना एड्रेस सहित जहां को पई विश एवं जहां विश ताकु लिखि पठे देबे 09495963210 नंबर रे किंबा व्हाट्सएप करि परिवे से 8895254200 नंबर रे।

0: अरे एत जल्दी थकी गलु, चल आउ गोटे राउंड जीवा, चल
1: तोर तो सब अभ्यास नथला।
2: ए सोई पडलु ना कोन, सिगरेट टाणी दे, निदा आपे आपे चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने।
1: ओ बुझिली, सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउ छु जानि पारछु त।
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thi bato pai. Chhade obvious. Hale better option kono? Aau kichi option rahibo to pakhare.

पिपराय रुचिका राय टूना भाई रमेश भाई उर्मिलाप्पा मुन्ना भाई विजय भाई चांद भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग आपण समस्त को मध्य वेरी गुड इवनिंग एबे सुनिबा ए ब्यूटीफुल ट्रैक स्टे ट्यून्ड।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था।

योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो गर्दे समय राति 8:07:52 सुधी पाछे आपणक पाखरे गीतरे मितरे सुनवा किछि लवली ट्रैक्स एवं एंजॉय करवा किछि मीठा मीठा कथा यस तबे मीठा मीठा कथा भलो भलो कथा काहा को सुनबा को भलो न लागे जीवन रे किछि करबा को चाहिले आमे समस्ते चाहो जे मु एटा पाई जाए मु एटा जीती जाए मोर एटा हे जाओ मु सेटा नै जाए समस्ते चाहंती निज जीवन रे सफल होबा पई हेले गोटे जिंस सबळ भुली जांती

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है।

0: जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक अभुला स्मृति रे सुनिछंती किछि अभुला एवरग्रीन गीत बत्तासी छोड़ फिल्म रो गीत सुनि परिबे येसुदास हेमलता सिकंदर आलम को वॉइस रे गीत टिकु लिखिछंती अतुल महाकोड गीत टिकु म्यूजिक रे सजिछंती सलील चौधरी

0: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 30 ମେ 2026 28 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚକଙ୍କୁ 2 ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଦେବେ। ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ voters.eci.gov.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ 2 ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘର 1950 କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ରେ ବୁକ୍ ଏ କଲ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଲ୍ଓ ସୁବିଧାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।
1: खवातीन और हजरात, आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जनाब चुलबुले असरानी साहब को बुलाया गया था, मगर अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो चुलबुले गुलगुले होकर बुलबुले हो चुके हैं और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके ना आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी ये हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर, ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।

प्रभात बळियार सिंह चंदन टुनी बांकी कॉलेज बांकी रु परवर्ती मेसेज करिसेंती हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नखेलाल वर्मा छत्तीसगढ़ रु देन मेसेज करिसेंती तुलसीदास महतो कल्पना महतो मनोरमा महतो मनमोहिनी महतो दीनबंधु महतो मेसेज करिसेंती झारखंड रु लिखुचेंती हम सभी को कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच आपनों का मतामत पाई नारायण प्रधान बुगुड़ा गंजाम रु मेसेज करिसेंती देन मेसेज करिसेंती जितेंद्र नियाली रु परवर्ती मेसेज करिसेंती प्रदीप कुमार सामंत सिंघार सीडीएस सेक्टर 12 कटक रु देन मेसेज करिसेंती सोनाली जेना आरके पटना रघुनाथपुर केन्द्रापड़ा रु मेसेज करिसेंती देन मेसेज करिसेंती समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला मामाली कंतोल आठगड़ रु जय श्री राधे राधे जनैछंती आपनको मध्ये जय श्री राधे राधे ससुधर नायक मेसेज करिसेंती राज्यवाटी नगर आठगड़ रु सुनिदबा से मानंक मनपसंद गीता

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की

0: रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनसुनते आकाशवाणी कटक केन्द्ररो
3: राती 11:05 मिनिटर मुख्य संवाद सह महेन्द्र कुमार माझी। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ପୁରୀଠାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2026 ଚିଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘରଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଘରଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 2 ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ 6 ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ

हेलो हाय नमस्कार हाँ निसी तरफ रो आपण मनकु बहुत बहुत शुभेच्छा शुभ अभिनंदन एवं शुभ कामना आज आपण मनकर जहा जहा भी काम अछि से सब काम सफल हो सब काम ठीक भाबरे आरंभ हे ठीक भाबरे सरी जाऊ आपण सुस्थ रहंतु निरोग रहंतु आनंद रे रहंतु आम सहित जोड़ी हेगि रहि थांतु ए सुंदर भावना भीतर आरंभ करिबा शुभ सकाळ

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटेक दिल से दिल तक रे निश्चय आपन को सहित सो स्टार्ट करबा डायल इन लाइव चिट चैट। आज टॉपिक रहे छि वर्तमान जो प्रकार गरम गुळगुळी खरा हो छि आपन को यदि सुजोग मिले कोनसी ठंडा जगह को बुलीबा को जिबा पई ताहाले आपन को जगह को बुलीबा पई चाहिबे बा को जगह को चूज करिबे सीधा सड़क हमको कहि परिबे हमर टेलीफोन नंबर 0671230315।

0: निश्चित भावरे मन टिके फुर्ती करिबा पई आमे समस्ते चाहू इत्ते बिजी शेड्यूल भितरे थाई टिके जदी आमको मौका मिलिला सुजोग मिलिला समय मिलिला ताहले टिके भलो जागा को माने प्राकृतिक परिवेश को बुलाबुली करि जिबा पई कहार इच्छा न होबो कहले सेथरो आमे बा बात पड़िबा केमिति तेणु प्रचुर गरम गुड़गुड़ी जो होउछि जदी कोनोसे ठंडा जागा को बुलिबा पई सुजोग मिलिला ताहले अपन को जगह चूज करिबे आमको आज कहि परिबे एबे देखिया फर्स्ट कलर की हम से ते जुड़ी ही गेलेनी। हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
1: अपन नमस्कार।
0: नमस्कार क्यों कहो छंती
1: आबासन को चले टाटा शिल्पन
0: आज अपन फर्स्ट कलर भाव रे हम से ते जुड़ी ही छंती कोहु तो को जगह अपन को पसंद
1: कॉलटा लागे छी बहुत धन्यवाद पप्पा जदी एबे जे बाध्य जे पठेबे
0: दारिंगबाड़ी बढ़िया लगे ना परिवेश प्राकृतिक परिवेश
1: ठंडा
0: निहाती भाव लगे ठंडा
1: गले बहुत भल लगे थंडा पड़ बहुत मन उपभोग करू परिवेश तार कुकु झरणार पानी उपभोग करू
0: जमा दी दिन ठीक अच्छे से दी दिन आपण को मने मने वर्तमान सुजोग मिल गला आपण मानसिक भाव जाइके बुली आसंत ओके ठीक अच्छे फास्ट कलर हिसाब रे हम सहित जोड़ी हेले आपण को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपा नमस्कार।
2: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे स्टार्ट ही जाय छी डायलिंग लाइव चिटचैट शो आपण माने हम सते सीधा सड़ख कनेक्ट हे परिबे निज मनर कथा हमकु कहि परिबे टॉपिक संपर्क करे तबे आजरो टॉपिक रहै छी वर्तमान जो खरा गरम गुड़गुड़ी ए समय जदि गोटे ठंडा जगह को बुलिबा पे आपण को सुजोग मिलिबो ताहले आपण को जगह को बुलिबा पे इच्छा प्रकाश करिवे एबे देखबा आउ जने कलर हम सते जोडी हे गेलेनी हेलो
1: हेलो दीदी नमस्कार
0: नमस्कार के कहो छथि
1: मु साई कहो छी
0: बेलपडा रु साई को हमें स्वागत करि दबा तबे साई अपन कोड़े बुलीबा पे चाहिबे वर्तमान समय
1: ए गरम रे तो कोड़े जीवा को इच्छा होनी मते यदि सुजो मिलो गरम हो कि जा हो मु पूरी जीवा चाहिनी काना सटी जीवा को मते बहुत भल लागे गरम भी जणा पड़े ना
0: अच्छा महाप्रभु को के दर्शन करबो समुद्र रे ठीक बुला बुली करबे ने कि
1: जगन्नाथ
0: को दर्शन करने
1: ସେମିତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗୁନି ବୋଧେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବନି ଏମିତି ହେଇଛି ବି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବାହାରିଛି ବି ଯାଇପାରିନି
0: ଆରେ ଆରେ ଆରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲ ମନ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
1: ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ରହିଲି ନମସ୍କାର
0: ନମସ୍କାର

0: म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली छे डायल इन लाइव चिटचाट शो। आज रो टॉपिक रही छे वर्तमान जो खरा गरम गुड़गुड़ी ए समरे गोटे ठंडा जगह को बोली जिबा पई आपन को जदि सुजोग मिलिबा ताहले आपन को जगह चूज करबे। सीधा सड़क भाव में आमको जनई पारे आम टेलीफोन नंबर 0671230353। देखिबा आउ जने कलर को हेलो
1: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: आपण को स्वागत जनउछि। कोन कहिबे आज रो टॉपिक संपर्क करे
1: भक्ति रो डोरी रे बांधी बिरे तोते तू तो मोर मयूर चंद्रिका जीवन रो एही अमा अंधकार रे तू तो मोर आलोक वर्तिका मु पुरी शहर को जीवा को चाहिबी प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को चाहिबी आनंद बजार भिड़ रे अभड़ा खाइबा को चाहिबी एवं बेलाभूमि समुद्र बेलाभूमि रे शांत भाव रे बसिकी ढेउ गणिबी।
0: वाह इत्ते इत्ते भावना आपण को मन भीतर अछि सुंदर भाव रे आपण महाप्रभु को पाख को हम को नै गले एंति गोड़े सुजोग आपण को खूब शीघ्र मिलु आपण जानत जगन्नाथ को दर्शन करके आसंत जहा जहा मन रे अछि।
1: आज्ञा अतीत अनेक थर प्रभु श्रीजगन्नाथ मंदिर को जाश्वास करें सत कथा कहती एमती भी समय चला मु प्रतिदिन पूरी जाऊ
0: बढ़िया
1: प्रतिदिन पूरी जाऊ प्रथम काम होगा पूरी जीव आउ जगन्नाथ को दर्शन करी आनंद बजार अबड़ा खाइबि मंदिर रही समुद्र बेला भूमि की जीवी
0: बहुत बढ़िया सुंदर कथ एमती भावना रे आपण बुड़ी रहुथिले पूर्वरु एबे टिके कम जाउछंती जाहो आपणकर सेमती भावना रहिछि महाप्रभु को प्रति आपणकर श्रद्धा भक्ति रहिछि आपणको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित शामिल हेले सकल सकल टेलीफोन माध्यम रे
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: ଶ୍ରୀନଗର ରେ
1: ମୁଁ ତ ବୋଧେ 6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିବି, 6 ଥର ଯାଇଛି ଶ୍ରୀନଗର,
0: ବହୁତ ବଢିଆ।
1: जैसलमेर भी 3-4 जाइए राति कटेबा लगे।
0: अच्छा श्रीनगर
1: कटे
0: श्रीनगर रे शीत दिन उषुम लगे ना?
1: बढ़िया लगे, बरफ पड़ू पड़ू माने चल थ रास्ता रे तार जो मजा से मजा जी जानी से जानी।
0: अच्छा
1: स्नोफल हो मुह सारा स्नो हो देह सारा स्नो हो बढ़िया लगे मजा लगे।
0: अच्छा
1: निहाती थे से कौन सीटा जा फिल कर
0: श्रीनगर
1: जैसलमेर जैसलमेर राति कटे बाली रे।
0: अच्छा
1: डेजर्ट रे बाली जो डेजर्ट रे राति कटे चाली चाली थी तार मजा अच्छी श्रीनगर रे दिन बेला राति बेला अधिक ठंडा लगे दिन बेला
0: प्राकृतिक सौंदर्य भाई प्रकृत बुड़ीजा मनुष्य सबकि
1: भूली लगुच गरम आपको दिन लगे जैसलमेर गरम बट रात बढ़िया लगे बालीटा रात थंडा
0: जाए
1: बहुत बढ़िया लगे डेजर्ट बहुत बढ़िया लगे देखी दुबई रे जो कैंपफेयर डेजर्ट सफारी जो डेजर्ट सफारी से डेजर्ट सफारी साधारण रात चले दिन बेला ट्रैक करते ट्रैक जाती रात कैंपफेयर करती मजा लगे।
0: अच्छा ओके आपण माने एते सुंदर भाव रे वर्णना कले से सब जगह रे मु तो जाईनी अन्य माने की जाईथिबे न जाईथिबे जो माने जाईथिबे से माने एक्चुअली सेटा को फील कर परथिबे जो माने न जाई छंती मिस करू छंती केबे जदी सुजोग मिले निहाती भाव रे सेठी थरे अधे बुली आसीबा को बहुत भल लागिबो। ओके आपण को बहुत बहुत धन्यवाद हम सेता शामिल हेले टेलीफोन माध्यम रे। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक एबे एक विशेष सूचना कार्यक्रम संपर्क रे आसंता 13 तारीख शनिवार आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफ पूर्वाह्न 10:00 रु 11:00 पर्यंत एक घंटा पई एक विशेष फोन इन प्रश्न मंच कार्यक्रम सीधा प्रसारण करा जिवो इथरे विषय रहिछि सुस्थ वयोवृद्धि सह योगाभ्यास एही कार्यक्रम रे विशेषज्ञ भावे जोग देबे जोग प्रशिक्षिका मंजु मिश्र एवं योग प्रशिक्षक सुरेश कुमार महापात्र कार्यक्रम को संयोजना करेंगे प्रज्ञा पारमिता साहू श्रोता बंधु माने एही विषय संपर्कित प्रश्न टेलीफोन नंबर 0671230-3146 एवं 0671230-3149 जरिया रे स्टूडियो रे उपस्थित थिबा विशेषज्ञ को सीधा सळख प्रश्न पछरे उत्तर पाई परिबे सूचनाटी एतिक्रे शेष होला

म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आरंभ करिबा रेनबो एसएमएस जो प्रोग्राम रे अपन माने एसएमएस माध्यम रे मन पसंद गीत सुनी थांती तेबे फर्स्ट श्रोता भाव रे एसएमएस करी छंती समेत संगीता पंडा तेलंगा पेंठ कटक रु सुनबा पें चाहि छंती रूप कुमार राठौर वॉयस गोटे सुंदर गीत जेहेतु आज जन्मदिन से आम कार्यक्रम तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना सहित से गाय गोटे सुंदर गीत आपण शुणी दौर बॉर्डर फिल्म रो

भजा तू की गाणी बुक्ती रती मजा रतनी गज गमने कुल बनी जा मोर घरणी हलो रतनी गज गमने कुल बनी जा मोर घरणी।

0: जा
1: तोर मोर जोड़ जाऊरी पथर चरना आउताऊरी
2: रतनी गजगमनी तुल भनी जा मोर घरणी।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी कलाकार साथी दक्षिण भारतीय चलचित्र जगत रे साधना सरकम बहुत लोकप्रिय थिले प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान का सा अनेक लोकप्रिय गीत मध्य गाइथिले हां साथी तांका कंठरे गाइथिबा गीत गुडी का संगीत प्रेमी मानन का मध्य रे बहुत आदृत होइथिला

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई

0: चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु, चल आउट राउंड जीबा चल।
1: तोर तो ऐसा अभ्यास नथला?
2: हे सोई पड़लू ना कौन? सिगरेट टेटानी दे, निद्दा आप भी चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं,
2: नॉलेज चाहिए बुके मिती, मुंडो पर बार रिटेन टेस्ट, ने?
1: ओ बुझिली,
3: सिगरेट पीपी के मिती देखा जाऊँ।

पांपड़ आउ लुगा सुखुथिला सेठी एबे बिजुली बिल जीरो हेउछि गा गा रे लोके सोलर पैनल लगे लेनी हा आपण भी लगे नियंतु 78,000 रो सब्सिडी देउछंती भारत सरकार 30 लाख रु अधिक परिवार एहार लाभ उठै सारलेनी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

वेलकम ब्याक वन सेकंड ट्यून करछिंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी केछि कथा केछि गीत हां साजे आमे प्रायत जीवन रे अनेक भूल मध्ये करि दैथौ एवं परे अनुताप करिथौ आमे भाबू जदि समय पूर्णि थरे फेरि आसंता तेबे निज भूल को सुधारि पारंदे किंतु समय कोन फेरि आसे ना अतीतर स्मृति को आमे शिक्षा दे परु अतीतर स्मृति आमको शिक्षा दे पारे सते किंतु अतीत निजे केबे वर्तमान होई पारेनि सेथि पई आमे प्रत्येक क्षण रे तार मूल्य बुझी तार सठिक व्यवहार करबा उचित ना कोन कहछंती

93.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुजाता अछि आपन मन के सहित सोचली छी किछि कथा किछि गीत साथी छात्र जीवन समय रे समय रो महत्व अत्यंत अधिक जदी सेही समय को हमें सम्मान दबा नियमित अध्ययन करबा तेबे भविष्य रे सफलता मध्ये लाभ करबा जदि आमे अवहेला करबा कि अलसम रे दिन काटिबा तेबे आमे निश्चिंत सेही समय को फेरे आनी परिबानी आमे निजे निजे लॉस करबा केवल सेतिकि नुहे छात्र जीवन रे खाली नुहे जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र रे समय रो गुरुत्व रहिछि जेमिति कि जने कृषक होय फोंतु जने श्रमिक फोंतु कि डाक्टर फोंतु शिक्षक फोंतु किंबा अधिकारी हुंतु समस्तंक पई समय एक अमूल्य संपदा

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु चल आउ गोटे राउंड जीवा चल
1: तोर तो सब अभ्यास नथला
2: ए सोई पडलु ना कोन सिगरेट टाणी दे निदा आबे आबे चली जीवो
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने
3: ओ बुझिली
1: सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउछ।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनबर्ग कटक दिल से दिल तक सो चली छी केची कथा किछि गीत हां साथी समय र मूल्य महान व्यक्ति तांको निज जीवन रे प्रत्येक क्षण को सदुपयोग करी सफलतार शिखर रे पहुंची छंदी से माने केबे भी अलसवामी करिनथले समय को निजर सबुठारु बड़ संपद भाबरे ग्रहण करथले

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी केछि कथा केछि गीत। हां साथी, समय त केबे फेरी चाहे ना। हां, आम जीवन रो या होछि गोटे गभीर सत्य। या हमकु सचेतन करी थाय जे समय को अवहेला करबा केबे भी उचित नहि। आमे यदि प्रत्येक क्षण रो मूल्य बुझिबा, परिश्रम एवं निष्ठार सहित कार्य करबा, तेबे जीवन रो सफलता ओ संतोष निश्चिंत भाव में मिलेगा।

0: 26 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचक को दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूर्ण करबा परे एहा को बीएलएम को निकट रे दाखल करंतु एवं तांको थारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट ऐप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है, यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
2: फ्रेंड्स, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राजेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को

0: सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन।

गायन स्वर चारवी, नव्या और एंजल। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।